0: इससे मालामाल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
1: यू मीन सफल ट्रेवल?
0: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
1: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल।
0: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
1: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
2: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
3: आतिफ असलम लाइव इन द यूके।
4: झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त दम।
5: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

हमारे खलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए tarikhalal.com।

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीट हासिल कीजिए.
1: This is Like a Radio.
2: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
3: You mean Subtle Travel?
2: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
3: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel.
2: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
4: Cool, Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.

0: Indeed, the companions of paradise that day will be amused in joyful occupation.
1: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.
2: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre, India और दुबई में houseful shows के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को as रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की undiscovered stories live on stage 9 से 12 जुलाई event in Apollo Hammersmith Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Laika Radio.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim.
0: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

है पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कटरीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: ऐसे
1: सेको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए,
1: जहां जिंदगी वहां सेटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
3: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
4: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
3: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
4: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
3: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: This Eid al-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
11: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
12: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
11: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
12: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल।
11: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
12: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
13: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
16: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
17: जगदात्री,
16: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
17: माला ले आना, लाइया जी।
16: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
18: टीम गेट रेडी फॉर द एक्शन।
16: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 बजे ZTV HD और Z5 पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
19: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
20: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
19: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
20: लोकेटेड in Dubai in a prime location for high appreciation.
19: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
20: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
19: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
20: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
19: high appreciation
20: in Dubai.
21: Punjab, the biggest tunes.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
0: Did you know you can advertise on this station, Laika Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Laika Radio Greater London and Laika Gold Greater London. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0161 250

0: एक मेयोरे का, बाकी सब कहानी है। अभी पूरे 3 घंटे आपको सुनानी जी हाँ जी, आशिकी और मोहब्बत के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बैक टू बैक दो गाने, वार्म अप टाइम।
1: आँखों ही आँखों में, बातों ही बातों में तूने चुराया।
0: हाँ जी, आँखों ही आँखों में और बातें ही बातें तो होंगी हमारी और आपकी व्हाट्सएप के जरिए। दिल में एक तस्वीर लिए, जुमरात की सुबह, थर्सडे मॉर्निंग।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: जी हाँ सच्ची बात है, कभी किसी की चाहत को पैसों से ना तोलना यार, हमेशा बातें मीठी मीठी बोलना। प्रोग्राम के पहले से का पहला मीठा सा पंजाबी सॉन्ग। कहते हैं ना कि
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: जी हाँ, करेंसी क्रिएटर हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 1.34 इंडियन रुपीज में 129.75, पाकिस्तानी रुपीज में 375.40, बांग्लादेशी टका 165.71, श्रीलंकन रुपीज 463.04, जबकि अफगानी रुपीज 84.36।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio.
0: हाँ, मैं कह रहा था कि वो कहते हैं ना कि मीठा बोल बड़ा अनमोल, तो लिहाजा इसी बात से इब्तदा करते हैं रबे जलील के उस बाबरकत नाम से अपने शो की जो मेरे और आपके दिलों के भेद खूब जानता है। जुमेरात की सुबह, हफ्ते का चौथा मिड मॉर्निंग शो, वही जुमेरात जो बुध के बाद और जुमे से पहले आती है। और आज मई महीने की हो गई है 21 तारीख, 21 मई 2026। हमारी डायरी का पन्ना आज भी खाली, लेकिन कोई बात नहीं, उसे भर देंगे हम आपकी चाहतों से, आपकी बातों से। और हो सकता है कि आज आपके यहाँ किसी की बर्थडे हो, किसी का जन्मदिन, तो आप मुझे बता सकते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी है, मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग है, या कोई भी आपकी डायरी पे आज से कई साल पहले कोई वाकया लिखा हो, कोई पहली भूजी हो किसी से आपने। हाँ, पहली पे याद आया आज का रिडल। एक नया सिलसिला, एक नया काम हम आपको आजकल अपने शो में रोजाना देने लगे हैं, और आज की जो पहली हम जल्दी से आपसे पूछ लें, ताकि बाकी बातें तो होती रहेंगी और आपके जवाब आते रहेंगे। व्हाट्सएप पे आप अपने होने का एहसास दिलाएंगे, घर पे हैं, काम पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मेरे साथ होंगे अब, और पहली पूछते हैं सबसे पहले आपसे, बताइए वो कौन सी चीज है, बताइए वो कौन सी चीज है जो खरीदते वक्त, जब आप उसे खरीदते हैं तो खरीदते वक्त वो काली होती है, इस्तेमाल करते वक्त वो लाल हो जाती है, इस्तेमाल करते वक्त वो लाल हो जाती है, और फेंकते वक्त जब मकसूद होता है कि उसे फेंक दें, वो इस्तेमाल की नहीं रही, तो वो सफेद हो जाती है।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और साउथहॉल वालों का पैगाम आपको बता दें कि ये कह रहे हैं कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथहॉल ट्रेवल, और 40 वर्ष हो गए इनको भी आपकी खिदमत करते करते, लिहाजा कहते हैं कि इनको आपको जो है ये नई डील्स दे रहे हैं, इंक्लूडिंग फ्लाइट्स होटल्स के साथ साथ ATOL जो है वो प्रोटेक्ट करेगा आपको। और मजीद मालूम के लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हैं 02085748410 पर।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: हाँ जी, नई उम्मीदें और नई उमंग के साथ, कुछ ख्वाहिशात, कुछ छोटे छोटे सपनों के साथ, अपने दिल में अरमान लिए रोजाना आज भी आपके साथ पूरे एक बजे तक। खुशामदीद एंड वेलकम टू लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: This gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: जी हाँ जी, गोल्ड का रेट हमारे यहाँ सोने का भाव आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत यूके में हमारे यहाँ 108.89 यानी 108 पाउंड 79 पेनिया, और पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव आज भी कल की तरह 39,500 रुपए 39,500 रुपीज।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartihanks.com। Leica Radio.
2: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person? Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit SBIUK.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
7: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
8: यू मीन सॉफ्टॉल ट्रेवल?
7: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
8: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टॉल ट्रेवल।
9: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
8: फिर दुनिया में

0: हैं जी दो प्यारे प्यारे से बहन भाई, जैसे कि ताबिश भाई, सब बहनों का एक ही भाई ताबिश भाई। शुक्रिया तमाम साथियों दोस्तों का। प्रोग्राम का पहला हिस्सा इतनी जल्दी आखिरी ब्रेक तक पहुंचेगा मुझे अंदाजा नहीं था।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK brand.
0: हाँ जी, SBI वालों को पैगाम बकराई दे रही है, पैसे भेज दीजिए इंडिया। कहते हैं कि योर वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI यूनो ऐप, इसके जरिए या बिफोर जून से पहले पहले अगर आप जल्दी से पैसे भेजिए, और कम से कम अगर आप 1,000 पाउंड भेजते हैं तो आपको ये हर हफ्ते 75 पाउंड का वाउचर दे रहे हैं, शायद वो आपको मिले। और अगर आपने 2,000 पाउंड भेजे कम से कम या इससे ज्यादा तो आपको 1 ग्राम गोल्ड भी मिल सकता है।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. Seas apply. We are Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: हाँ जी, क्रिकेट अपडेट आपको बताएं कल का स्कोर। कल मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर के दरमियान जो मैच हुआ था वो विन किया था जनाब कोलकाता नाइट राइडर ने, जो ये इस मैच को जीत लिया था। और इन्होंने रन बनाए थे 148, 148 रन बनाए थे और 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे। जबकि तकरीबन कोई 4.5 घंटे के बाद अब जो मैच होगा दोबारा अहमदाबाद में, वो टीमें खेलेंगी गुजरात टाइटंस और चेन्नई एक्सप्रेस के इनके दरमियान ये मैच होगा।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: We hit
3: Leica Radio.
1: Leica Radio.
0: हाँ जी, ये है लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर। मैं हूँ आपका मेजबान इब्न ताबिश। तमाम साथी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार जो मेरे साथ हैं। मेरे आने से भी 5 या 10 मिनट पहले आप लोग आ जाते हैं, न जाने आपको कैसे पता चल जाता है कि ताबिश भाई स्टूडियो में आ गए हैं और सेटअप कर रहे हैं अपने स्टूडियो में अपने इस, ये जो पूरा का पूरा हमारा पैनल है ये कंप्यूटर से भरा हुआ हमारी डेस्क, हम इसे छेड़ते छाड़ते हैं और देखते हैं आके और अपने प्रोग्राम को प्रोड्यूस करते हैं, तैयारी करते हैं कि आज के दिन तारीख के हवाले से क्या हो रहा है दुनिया भर में। आपके लिए न्यूज़ निकालना, आपके लिए गाने प्ले करने के लिए उनकी लिस्ट बनाना और आपके मैसेजेस का जवाब देना। फिर धीरे धीरे प्रोग्राम जो है अपने वार्म अप टाइम से निकलता है और फिर सोचता हूँ कि अब किया क्या जाए। लिहाजा पहली तो हमने पूछ लिया आपसे, पहली के जवाब आने शुरू हो गए हैं, बड़े होशियार हैं साहब। कराची में हमारे साथ निभाएंगे फरीद भाई, आपको बहुत शुक्रिया। खुशामदीद, लाहौर में ताबीर हमारे साथ होंगी और शमा। नेदरलैंड में ताहिर जावेद हमारे साथ होंगे। कनाडा में हमारे साथ हैं जी रॉबिन भाई, अभी तक वहीं हैं, अगले हफ्ते आएंगे वो। लंदन में हमारे साथ निभाएंगे ताहिर सिद्दीक भाई और 12 बजे के बाद उज्मा जी साथ निभाएंगी हमारा। नेल्सन में हमारे साथ होंगे खालिद महमूद भाई और बर्नले में हमारे साथ होंगे नौशाद अली भाई। नेलसनी में खालिद वहीद भाई की गैर हाजिरी लगी है, 3 दिन से ज्यादा हो गए, नाम कट जाएगा, ख्याल रखना। सेंट हेलेन में हमारे साथ हैं जी नूर, अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, बैठी है सर्जरी में मगर फिर भी हमें सुन रही हैं। चौधरी बरादर में हमारे साथ निभाएंगे जमशेद चौधरी भाई स्टॉकपोर्ट में। ब्लैकपूल में नवाज भाई हमारे साथ होंगे। मजर भाई लीड्स में साथ निभाएंगे और फरजाना नसीब जिनकी बेटी की आज शादी की सालगिरह है हमारे साथ होंगी। वारिंगटन में
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Z105.
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply. Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
3: Ibanez Habish on Leica Radio, Greater Manchester. This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: जी दो दिल दो निगाहें दो जानी दो दोस्त दो जिंदगियां आजादी के साथ में क्यों कहूँ चुपके चुपके कुमार सानू लाइव प्रोग्राम करेंगे 25 मई वन डे वन शो लंदन के अल्बर्ट हॉल में आपकी निगाहों के सामने लाइक रेडियोस के एक्सक्लूसिव पार्टनर हैं और लाइक रेडियो टिकट आप बुक करा सकते हैं। तमाम साथियों का शुक्रिया। पहली के जवाब आज का हमारा जो रिडल है उसके जवाब आने शुरू हो गए। हमने पूछा था कि वो कौन सी चीज है जिसे खरीदते वक्त वो काली होती है, इस्तेमाल करें तो लाल होती है, फेंक दो तो सफेद हो जाती है, रंग बदलती है भाई गिरगिट की तरह। गिरगिट की तरह कहीं गिरगिट तो नहीं पूछा मैंने? नो वे। बहुत आसान है। और साजिदा सुमरो है हमारे साथ प्रेस्टन में, जाहिद अब्बास भाई आप हैं हमारे साथ प्रेस्टन में ही हमारे साथ हैं, खुशबू वल्ली भाई और ब्लैकबर्न में गुलाम अली भाई। गुलाम अली भाई ने मुझे जवाब शायद लिख के भेजा है, मैं भूल गया क्या लिख के भेजा था। गुलाम अली भाई ने आपने लिखा डेट्स यानी खजूर। और बरी में हमारे साथ हैं चंदा और अमन और लेला और शमीम मानो बेगानी है, कहती है कोई भी प्यारा सा अच्छा सा पुराना क्लासिक सॉन्ग ताविश भाई मेरे नाम। हाँ हमारी बहन क्यों नहीं, गजाला जी भी हमारी बहन है रोजडेल में और थोड़ी सी तबीयत नासाज है रुखसाना जी की। रुखसाना अफजल, अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करे जल्द, नो प्रॉब्लम, हमारी दुआएं आपके साथ साथ हैं। मलिका हमारे साथ है, मलिका ने हमें खुश आमदीद कहा था, बहुत शुक्रिया शहजाद, वालेकुम अस्सलाम। नौशाद अली भाई, उमर, रुखसाना आमिर, आसिम अभी गैर हाजिर है भाई जबकि राहिम हमारे साथ है। राहिम खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग।
1: I like a radio classic. Plays now.

0: प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक बार फिर से तकरार दिल की और पहले प्यार की। आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो जरा गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, जरा ध्यान से। हाँ, लेकिन तीसरा सॉन्ग जरा इससे मुख्तलिफ होगा।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोकोनट।

0: is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: जी हाँ जी, करेंसी रेट अमेरिकन डॉलर 1.34 1.34 इंडियन रुपीज में 129.75, पाकिस्तानी रुपीज में 375.40, बांग्लादेशी टका 165.71, श्रीलंकन रुपीज 463.04 और अफगानी रुपीज 84.36.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio.
1: जी हाँ जी, कोई शर्त नहीं है. हमने तो आपसे ऐसे ही बस एक रिडल कह लें, एक उर्दू में बोलें तो पहेली. सहेली बूझ पहेली, क्या है वो लड़कियां? तो ऐसे एक बहाना है आपको जरा अपने साथ साथ रखने का, जोड़े रखने का. वो कौन सी चीज है जिसे आप खरीदते हैं तो वो काली होती है, बाद में वो रंग तब्दील करती है, इस्तेमाल करते हैं तो लाल हो जाती है और जब उसे फेंकते हैं तो सफेद हो जाती है. बहरहाल जी, लड़कियां बड़ी चलाक होती हैं, खासतौर पर खवातीन. हम मर्दों से ज्यादा समझदार होती हैं. ऐसा है भाई, मान लें, हम तो कब के मान चुके हैं. रिज राजा ने हमें ज्वाइन किया है बहुत दिनों के बाद. रिज राजा, कौन सी बस्ती के राजा हो यार, कहाँ गायब रहते हो? एक और है हमारे पास, अतीक राजा. आप सबका बेहद शुक्रिया. अबरार, वालेकुम अस्सलाम. उमर भाई, आपका बेहद शुक्रिया. हमारे साथ साथ आप हैं. आपने अब जो लोग कुछ देर के लिए गाड़ी से उतर गए थे, किसी की अपॉइंटमेंट होती है, कहीं ना कहीं काम होता है, तो दोबारा आके आपने ट्यून इन किया है लाइक रेडियो को और सुनना शुरू किया है, तो आपका बेहद शुक्रिया. नवाजिश, बहुत दिनों के बाद आज हमने पंजाबी सॉन्ग में नसीबोलाल की आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल किया और इसके लिए हमसे दरख्वास्त की थी कल अदनान ने रॉज जेल से, और यही गीत जमशेद भाई को भी बहुत अच्छा लगा. और मैं भूल जाता हूँ, आप मुझे याद दिला दिया कीजिए. आपको पता है मैं हर घंटे में एक पंजाबी सॉन्ग तो लगाता हूँ आपके लिए, बाकी उर्दू गाने भी होते हैं और क्लासिक और न्यू सॉन्ग भी शामिल होते हैं, तो आप मुझे बता दिया कीजिए. इसमें शर्माने की, हिचकिचाहट की कौन सी बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है.
3: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: एक चेहरा ढूंढता रहता हूँ दीवारों के दरवाजों पर। रीना भरद्वाज की आवाज का क्या ही खूबसूरत रिश्ते वाला सॉन्ग। मेरा और आपका रिश्ता क्या कहलाता है, ये पहली नहीं एक ऐसी एक बात है। कहते हैं जिस इंसान के साथ सुकून मिलता हो, जिस इंसान के साथ सुकून मिलता है उस इंसान के साथ वक्त भी बहुत कम मिलता है। जीते रहिए, खुश रहिए अपने खर्चे पे।
1: Is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: हाँ जी, गोल्ड का रेट, सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है 108 पाउंड 89 पेनिया, यानी 108 पाउंड 89 पेंस, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम सोना है 39,500 का।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio. Ye hai
1: Leica Radio. Ibn Ed Tabish on Leica Radio, Greater Manchester.
2: Leica Radio.
1: पॉडकास्ट अपडेट।
0: हाँ जी, लायका एक्स्ट्रा पे पॉडकास्ट को देखने के लिए आपको बताएं कि इस हफ्ते होस्ट करेंगी अनुज

0: जी हाँ, नगमा सराय है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज, और फिल्म का नाम है बाजी। Like Radio. मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सॉन्ग इतने सारे लोगों का पसंदीदा और फेवरेट सॉन्ग होगा। अतीका जी ने कहा बहुत अच्छा सॉन्ग था अभिष्ट। अतीका जी आपके नाम। पाकिस्तान में हमारी एक छोटी सी प्यारी सी बहन है मीरपुर आजाद कश्मीर में, उनका भी फेवरेट है ये सॉन्ग, तो उनके भी नाम। कहते हैं कितने नायाब होते हैं ये मोहब्बतों के रिश्ते, कितने नायाब होते हैं ये मोहब्बतों के रिश्ते, हर किसी को नहीं नसीब नहीं होते ये सच्चे रिश्ते, हर किसी को नसीब नहीं होते ये सच्चे रिश्ते, और कोई वापस ना आए तो इंतजार फिर भी रहता है। आए आए आए, कोई वापस ना आए तो इंतजार फिर भी रहता है, और दिल में नहीं कहीं ना कहीं उसका प्यार फिर भी बसा रहता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK brand.
0: जी हाँ जी, रेट है आज का ब्रिटिश फोन के बदले में SBI वाले दे रहे हैं 128 रुपए, और कहते हैं कि सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI यूनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून, तो आपको मिल सकते हैं 75 पाउंड का वाउचर अगर आप कम से कम 1000 पाउंड भेजते हैं, और अगर आपने कम से कम 2000 पाउंड भेजे इंडिया तो आपको 1 ग्राम गोल्ड मिल सकता है। टर्म्स कंडीशंस अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester. The Pakistani hit of the hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: चलिए आपको 80s में लेके चलते हैं। 1978 फिल्म का नाम अंबर। मेरी और आपकी कुछ पुरानी यादें। कराची में फरीद भाई आपके नाम हुआ ये गीत, और यहाँ हमारे यहाँ शमीम बानो बेगानी।

0: रेडियो। अरे जीते नहीं तुम पर भरते हैं, हम समझ रहे थे कि शायद हम जी रहे हैं। आज हमें मालूम हुआ। ड्राइव के दौरान सुन रहे थे हमें रिजवान, रिजवान हमारे बहुत पुराने साथी हैं, रिजवान जमट। कहते हैं वाह ताबिश भाई, मजबूर करते हैं कि हम कहीं गाड़ी रोकें और आपको मैसेज करें। कुमार सानू का ये गीत साधना सरगम गा रही थी, फिल्म का नाम था एक लड़का एक लड़की। इसी गाने को जाहिद अब्बास भाई आप की भी नाम करेंगे, बहुत अच्छा लगा। और अदनान रोजिल में आपका फेवरेट सॉन्ग है ये, तो आपका भी हुआ। कहते हैं मेरी आंखों से तेरी याद का साया नहीं जाता, मेरी आंखों से तेरी याद का साया नहीं जाता। मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, तुमको भुलाया नहीं जा सकता। और एक मुद्दत से तेरा नाम लिखा था दिल पर, एक मुद्दत से तेरा नाम लिखा था दिल पर। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, वो मुझसे मिटाया नहीं जाता। और होने वाले खुद ही हो जाते हैं, होने वाले तो खुद ही हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता।
1: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.
0: और मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। और अब आपसे मुलाकात होती है 12 बजे की खबरों के उस पार। कोई कहीं नहीं जाएगा। गजल का इंतखाब हो गया भैया, बड़ी दूर से आई है आज की गजल।

0: चाहिए।
1: हाँ, और क्या चाहिए, बोलिए किस किस को क्या चाहिए। मुझे कोई और नहीं, मुझे कोई और नहीं, बस तू चाहिए। दवन एंड नॉनली यू। गुड आफ्टरनून, जुमेरात की दोपहर, मई महीने की 21 तारीख। एक और बात, एक और इसी थीम और इसी मूड का सॉन्ग। ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा आपको, आप सबके नाम मेरी जानिब से। बैक टू बैक दोनों गाने बहुत अच्छे लगे, मलिका आपको, राहिम आपको, आसिम मोल्डम में आपको, और तबस्सुम हमें सैंट हेलेना में सुन रही है, आपके नाम भी इस गीत को करते हैं।
2: Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.

0: जी हाँ, सुबह बात चली थी रिश्ते से और बात वहां से आके मिली कि जी और क्या चाहिए। तो समीर मिर्ची वाला ने हमें लिखा कि हमें तो बस ताबिश भाई चाहिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच तमाम साथियों का।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: ये है लाइका रेडियो।
3: Clean, fresh feeling after brushing? Sidayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Sidayu, Ayurved that fits your life.
4: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
5: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
6: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
7: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
6: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: ब्रैडफोर्ड मेला, 1st एंड 2nd ऑफ अगस्त, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो। Your guzzle hit plays now on Leica Radio Greater Manchester.
0: जी हाँ, गुड आफ्टरनून, जुमेरात की दोपहर, और ये गजल आई है आज हमारे पास लाहौर से। ताबीर ने ये गजल हमें भेजी है।

0: लोग मिलते हैं और जुदा होते हैं,
1: Like a Radio.
0: और क्या अहद वफा होते हैं, जवाब नहीं हुई जबरदस्त इस गजल का। और सुरेश वाडेकर ने, गो के फिल्मी गुलकार हैं वो, लेकिन उनकी आवाज में बड़ा दर्द है। और बातों बातों में हमारी बात हो रही थी लाहौर से ताबीर आपके साथ, तो गपशप के दौरान ये गजल आपने हमें बताई अचानक, और पे याद आया कि और जब हम अहद जवानी में दोस्त यार एक साथ बैठा करते थे तो खामोशी तोड़ने के लिए एक दूसरे से अचानक पूछते थे, और तो मैं हमेशा कहा करता था और जेर गौर। तो बात फिर यूं चली इस तरह से कि कहते हैं दिल किसी पे आने से पहले ये नहीं देखता, दिल किसी पे आने से पहले ये नहीं देखता कि नसीब में ये शख्स लिखा है कि नहीं। शुक्रिया डॉक्टर अल्ताफ अली हमारे साथ हैं, बेहद शुक्रिया। और बरी में लेला ने हमें सिर्फ लिखा जी, क्या मतलब जू मैनिए जी, यानी मतलब ये मेरी तारीफ में है या कोई शिकवा है, कोई शिकायत है। कहते हैं खुद को मगालते में रखा है तमाम उम्र। अरे वाह, ये किसने भेजा है भाई, खुद को मगालते में रखा है तमाम उम्र, दुनिया तुम्हारे साथ तो धोखा नहीं किया। अच्छा अच्छा, यूं है कि खुद को मगालते में रखा है तमाम उम्र, दुनिया तुम्हारे साथ तो धोखा नहीं किया, और लोगों को जाने मुझसे शिकायत रही है क्यों, लोगों को जाने मुझसे शिकायत रही है क्यों, मैंने तो अपने साथ भी कभी अच्छा नहीं किया। अरे वाह।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Currency rate American dollar 1.34, Indian rupees में 129.75, पाकिस्तानी रुपीज में 375.40, बांग्लादेशी टका 165.71, श्रीलंकन रुपीज 463.04 और अफगानी रुपीज 84.36 का है आज।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. You're listening to LIKA Radio Greater Manchester on 963 AM and 1377 AM. Previously known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: हाँ जी, South Hall Travel वाले कहते हैं कि make this summer memorable with South Hall Travel. कह रहे हैं कि 40 बरस हो गए इनको भी आपके खिदमत में पेश, और ये कुछ नए डील्स निकाली हैं इन्होंने, और उन डील्स के मुतालिक आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। कहते हैं कि इंक्लूड फ्लाइट्स और होटल दिए दोनों शामिल होंगे। 02085748410 पे कॉल कीजिए।
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: और अब सोने का भाव, हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 108 पाउंड 89 पेंस यानी 108 पाउंड 89 पेनिया, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव है 39,500 रुपीस पाकिस्तान।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartyhanks.com.
2: LIKA Radio.
0: जी हाँ, आपको बता दें कि मई के महीने में 25 मई को लंदन में कुमार सानू परफॉर्म करने आ रहे हैं अल्बर्ट हॉल में, वन डे वन शो वन नाइट, और LIKA Radio इनका जो है एक्सक्लूसिव पार्टनर है आप जानते हैं। टिकट मास्टर से टिकट लीजिए, और उसके बाद आएंगे जून के महीने में 14 जून को आतिफ असलम। LIKA Radio नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर, आतिफ असलम इन लंदन कॉन्सर्ट करेंगे आपके सामने, और टिकट के लिए आप O2 लंदन में ये परफॉर्म करेंगे। टिकट के लिए आपने करना है कि AXS पे जाइए या वेन्यू पे भी आपको टिकट मिल सकता है।
1: LIKA Radio
2: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
3: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन सफल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
4: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल।
2: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Need a car the halal way?
11: Apne business ko UK ke largest Asian

0: जी हाँ, ये थी नेहा काकर जो कि इस हफ्ते की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है, और ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा मलिका आपको, तो आपके नाम करते हैं। और लंदन में अफशा जी हैं हमारे साथ, गजल उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, और गजल के मामले में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा जज्बाती भी होते हैं। आज आपको एक बात बता अच्छा जी, खाने में मेन्यू में ये था कि हमें प्रेस्टन से पिक्चर आई थी हमारे पास भिंडी मसाला, और गुलाम अली भाई कहते हैं मैं तो चिकन बिरयानी खा रहा हूँ, ओह माय गॉड। और लाहौर वालों ने खाए हैं चावल मगर चने वाले चावल, आहा, जिस लायक कबूली, मेरी अम्मी जान कबूली बनाया करती थी, छोले के चावल वेरी टेस्टी। एक बार फिर से तहे दिल से बाबू परवेज भाई रोशजर में हमारे साथ हैं। अतीका जी आपका बहुत शुक्रिया साथ निभाने का, शहजाद आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ भाई आस्टन में, जरीन आपने देर से हमें सुनना शुरू किया था लेकिन कोई बात नहीं, अब इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। और रिज राजा आपका बहुत शुक्रिया, तबस्सुम आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रही, बरी में लेला और राहिला जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रही सुबह से। आप अब्बास प्रेस्टन में, प्रेस्टन में जाहिद अब्बास भी होते हैं, वल्ली भाई भी होते हैं, और खुशबू और जाहिदा सुमरो। फरजाना बहन एक बार फिर से आपकी बहन, आपकी बेटी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अल्लाह पाक आपकी बिटिया रानी को सदा सुहागन रखे। आपने कहा था कि आज आपकी बेटी की शादी की सालगिरह है, माशाल्लाह बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं आपको बताएं। अदनान ने भरपूर साथ दिया सुबह से, और हार इसका मैसेज आया इतना लेट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: हाँ जी, SBI वालों को पैगाम कहते हैं कि अगर आप इंडिया अपने प्यारों को पैसे भेजें, और यकीन भेजें, और बकरीद आ रही है बड़ी ईदी जरूरत होगी, कहते हैं सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI यूनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून, और जून के महीने को शुरू होने से पहले पहले अगर आप रकम पहुंचाते हैं तो कम से कम 1000 रुपीस अगर आप पहुंचाते हैं तो 75 पाउंड का 75 पाउंड का आपको वाउचर मिल सकता है, और अगर 2000 पाउंड 2000 पाउंड पहुंचाएंगे तो आपको 1 ग्राम गोल्ड का एक सिक्का भी मिल सकता है, लेकिन टर्म्स कंडीशन अप्लाई होंगी।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट SBI UK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Formerly known as Asian Sound Radio, this is Leica Radio, Greater Manchester. The Pakistani hit of the hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

बात नहीं, कोई तमन्ना कोई ख्वाहिश, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अफशान ने लंदन से लिखा है कि ताबिश यू स्पाइलिंग मी नो वे, ये तो मेरा काम है। फिजा के चिलमनों से अब इब्न ताबिश आपसे इजाजत चाहता है। बेक टू बेक दो गाने आपका साथ निभाएंगे और एक बजे के बाद यहाँ पर होंगी रुबीना खान, मैगजीन शो आपके लिए पेश करेंगी और कल हफ्ते का, इस हफ्ते का लास्ट शो, फ्राइडे का शो आपकी like रेडियो आपके लिए पेश करने के लिए आऊंगा इंशाल्लाह। तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया, घर पे हैं, काम पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं कुछ और बहुत सारी चीजें थी हमारे पास, को कुछ साथियों ने भेजी थी जो शामिल ना हो सकी, लेकिन चलें एक चीज है शामिल करते हैं हम। चंदा ने हमें सुबह भेजा था कि खुद को तरतीब दिया आखिरकार असर नो, खुद को तरतीब दिया आखिरकार असर नो, जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। वेल डन चंदा जी, जीती रहे चंदा अपने नाम की तरह। दोपहर का वक्त है और बहुत भूख लग रही है और मैं पालक गोश खाऊंगा आज। हाँ, आई लव पालक गोश, आप भी खाइए, मौज मस्ती उड़ाइए। वैसे भी अब अगले हफ्ते से तो मैं खाना पीना छोड़ ही दूंगा, आपको पता है बकराईद आ रही है, बड़ी ईद है, तो फिर फ्रिज और फ्रीजर भी खाली करने हैं, आपको पता है। जमशेद भाई बहुत हंस रहे हैं आप, मुझे पता है आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट। तमाम साथियों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार। आज की जुमरात की हमारी जो प्लेलिस्ट थी प्रोग्राम की, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी आपको। और कल जाहिर है कि जुमा है, इस हफ्ते का लास्ट शो होगा, तो कल भी हम धमाल मचाएंगे। फिक्र मत कीजिए और किसी से जिक्र मत कीजिए। जी हाँ जी, अब ये घड़ियां बीत गई और एक बहुत प्यारी सी याद, मसूद राणा की आवाज। फी अमान अल्लाह और खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।

0: The Magazine Show with Robina Khan. Leica Radio.
1: सुन रहे हैं आप मैगजीन शो और आज क्या तारीख हो चुकी है. वक्त कितनी तेजी से गुजरता है. मंडे टू थर्सडे तो ऐसे आता है जैसे ये कोई एक ही बस वो जब सीरीज चल पड़ती है किसी चीज की तो आप उसको उसी तरीके से करते चला जाते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता और वक्त आगे बढ़ता चला जाता है. और अब आने वाले अब वीकेंड जो है वो लॉन्ग वीकेंड होगा क्योंकि मंडे बैंक हॉलीडे है. उसके बाद ईद है तो बहुत सी हैपनिंग्स हैं. उम्मीद करते हैं कि सब इंजॉय करें. मौसम भी लगता है कि अपनी जो अब शक्ल दिखाएगा गर्मी वाली. 21 डिग्रीज आज है. हो सकता है अगले हफ्ते तक और भी ज़्यादा मौसम गर्म भी हो जिसका हम इंतज़ार करते हैं. और जब गर्मी आती है तो फिर वाकई गर्मी लगती है. ये तो है. तो 21st of May 2026 और सुन रहे हैं मैगजीन शो और बहुत से अच्छे गानों के साथ बहुत सी बातों के साथ रहिएगा हमारे साथ साथ और हम हैं आपके साथ.
0: This is Robina Khan with the Magazine Show. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: का नाम है शहजादा और गाना भी क्या शहजादा है। मेरे सवाल का जवाब है तू। मुश्किल पोइट्री है इसकी लिखनी, इतनी ज्यादा आम सी बातें। सो मैं इसको यही कहूंगी कि ब्यूटीफुल ट्रैक। और कुछ देर में आप जोहर की अजान सुनिएगा।
1: Is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए तारिक हलाल.com।

0: तारिक हलाल। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com।
1: This is Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: करेंसी एक्सचेंज रेट सुन लीजिएगा। आज 1 pound के एक्सचेंज में US डॉलर आपको 1.34 मिलेंगे, इंडियन रुपीज 129.75, पाकिस्तानी 375.40, बांग्लादेशी 165.71 और श्रीलंकन 463.04, इवकानी 84.36।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LEICA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio.
3: LEICA Radio.
1: A LEICA Radio classic. Plays now.

0: is Rabina Khan with The Magazine Show. Leica Radio.
1: जी लाइक रेडियो और इस वक्त 21st of May के हवाले से कुछ अवेयरनेस है या इंटरनेशनल या नेशनली सेलिब्रेट किए जाते हैं जो दिन उनको जरा मेंशन कर दें. वर्ल्ड फिश माइग्रेशन डे है. जैसे फिश जो है पानी रिवर जो है वो फ्री रिवर है, बहते हैं, कोई रोकता नहीं है, तो फिश की जो है वो भी माइग्रेशन होती है. तो आज वर्ल्ड फिश डे है. वर्ल्ड मेडिटेशन डे है. ये हर रोज का जो है वो एक काम होना चाहिए. कहते यही है कि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन. लेकिन करे कौन ये भी तो बात है. टॉक लाइक योदा देवी है. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो जबकि हम लोग मल्टीकल्चरल

0: याद दिलाने की जरूरत होती है. एवरी सिंगल डे इज इंटरनेशनल टी डे.
1: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
0: मेघा सिंह एंड अमृता काकर की आवाजें सुनते हैं. फिल्म का नाम बॉडीगार्ड, 2011 की ये फिल्म थी. देसी बीट.

0: This is Rabina Khan with The Magazine Show. Like a Radio.
1: और आप मैसेज कर रहे हैं जी द मैगजीन शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको नंबर नहीं मालूम और आप सोच रहे हैं और सोचेंगे जब मैं ये मैसेजेस पढ़ लूंगी, मजीद सोचेंगे कि क्या आप भी मैसेज कर सकते हैं, तो नंबर है जी व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 07703403020। ठीक हो गया जी। सो मुझा आदाश में आपने कहा है कि सलाम सब लिसनर्स को कह दें, और फजाना नसीब आपने स्टिकर भेज दिया है। लेट्स सी कि स्टिकर क्या कहता है। कहता है जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और मलिका आपने लिखा है मैं आपको रोज़ सुनती हूँ लेकिन आप मैसेज आज पहली दफ़ा कर रही हैं। कोई बात नहीं जी, एक पहली दफ़ा तो हमेशा होती ही है। अयूब जान साहब आपने मैसेज किया है, रबीना खान साहिबा मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और अब मुझे खतरा है कि आगे आपने कोई फरमाइश की होनी है। अच्छा अब उधर आगे मैंने तारीफें की हुई हैं। अच्छा ये भी ठीक है, चलेगा। और लेकिन फिर उन्होंने मेरा ख्याल है कि हाँ रिक्वेस्ट भी कर दी है। ये बिल्कुल सही तरीका है, सीक्वेंस जो है ना बिल्कुल सही जा रहा है। एसपी सज्जाद आपने लिखा है, मैसेज किया है साजिदा सुमरू आपका मैसेज अभी देखा है मैंने, और मोहम्मद नियाज खान आपका मैसेज है, और आपको जो गाना अच्छा लगता है आप उस पर क्लैपिंग कर देते हैं। थैंक यू सो मच। और अब बारी है जी, वक्त है आपको सुन वंजली दी मिठरी थान तान। कई दफा जो उर्दू होती है गलत भी हो सकती है लेकिन उसका भी एक अलहदा, मैं आपसे बात करूंगी, इस गीत को सुन लें।
0: The hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: Magazine Show with Robina Khan. Leica Radio.
1: सेकेंड आवर के पहले बैक टू बैक दो सॉन्ग्स अभी आपने सुने, नच बलिए बंटी और बबली 2005 की फिल्म थी पहला गीत, और दूसरा गीत राइट हेयर राइट नाउ ये ब्लफ मास्टर फिल्म से गीत था, और ये भी इत्तेफाक है, और इतना भी इत्तेफाक नहीं, 2005 की फिल्म से इस गीत को हमने लिया, तो बैक टू बैक दो सॉन्ग्स आपके लिए प्ले किए गए.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: इतनी हंसी पता नहीं किस बात पे आ रही होगी, मुझे कुछ याद नहीं है कि फिल्म में क्या इसमें चल रहा था। चांदनी पे हंसी, बहरहाल ब्यूटीफुल ट्रैक तो था ही। लाइक अ रेडियो सजी, लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, और आप सुन रहे हैं द मैगजीन शो रुबीना खान के साथ। हमारे इस प्रोग्राम में मैगजीन शो है तो कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं, खबरें ऐसी होती हैं जो अजीबोगरीब भी हो सकती हैं और उन पर नजर होनी ही चाहिए क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो जाए।
1: खबर पर नजर विद रुबीना खान,
0: लाइक रेडियो। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपने बहुत ज़बरदस्त सा खाना बनाया है और सब कुछ तैयार है और उस खाने के साथ आप एक सैलेड जो कि ऑलरेडी आप निकालने जा रहे हैं किसी लिफाफे में से, थैले

0: breaks are brought to you by Southall Travel.
1: जैसे आपको बताते हैं कि अगर आप हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो आप साउथॉल ट्रेवल से अपनी बुकिंग करा सकते हैं एंड यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस समर साउथॉल ट्रेवल के साथ एक्सप्लोर बीच ब्रेक सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स होटल एंड एटीओसेल प्रोटेक्शन और इनका जो 40 साल का भरोसा है विनर है ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड के. विजिट कीजिए साउथॉल ट्रेवल और कॉल ऑन 0208 574 8410.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. 90s throwback plays now.
2: Like a radio.
1: Aaj hi ek beautiful track sunne ke liye bilkul taiyar ho jaiye. 1 2 3 and Dil Aashna hai. और जो आशना के हवाले से एक आध शेर लिखकर भेज सकते हैं तो भेजिए.

0: The Magazine Show with Robina Khan.
1: Like a radio. आशना का टाइटल ट्रैक भी आप सुन रहे थे. आशना मैंने आपको बहुत हैवी असाइनमेंट दे दी. ये पूरी करना इतना आसान नहीं था. आशना बहुत ही मुश्किल सा वर्ड है और इसके बहुत कम शेर है, लेकिन एक ऐसा शेर जरूर है मोमिन खान मोमिन का जो आप सबको याद होगा. कभी हम में तुम में भी चाहती तुम्हें याद हो के ना याद हो, कभी हम भी तुम भी थे आशना तुम्हें याद हो के ना याद हो. और एक और शेर है जगन्नाथ आजाद का, कौन ऐसा है जो इस बज में तन्हा न रहा, सिर्फ वो शख्स जो खुद अपना भी आशना न रहा.
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: सो यूनियो एस बी आई यू के जरिए अगर आप मनी सेंड करते हैं तो आज आपको ब्रिटिश पाउंड देगा 129.75 इंडियन रुपीस. और आपको बता दूं कि इंडिया अगर आप रकम सेंड करना चाहते हैं तो आप सेंड कीजिए जून के एंड तक, तो आप एक कॉम्पिटिशन में शामिल हो जाएंगे जिसमें आप विन कर पाएंगे 75 पाउंड का वाउचर एवरी डे. और अगर आप 2000 पाउंड सेंड करते हैं तो आप के पास चांस है कि आप 1 ग्राम गोल्ड कॉइन विन कर सकते हैं. टीज एंड सीज अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: तो जी आपको IPL 2026 की स्कोर अपडेट दे दें. 66 मैच खेला जा रहा है अहमदाबाद में और गुजरात टाइटंस एंड चेन्नई सुपर किंग के दरमियान ये मैच होगा. और चेन्नई सुपर किंग चूज टू फील्ड. अभी मैच शुरू होने वाला है, आपको स्कोर बताएंगे जब ये मैच एक्चुअली शुरू हुआ.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 0 3 9 6 3 5 7 5 7. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit WesternUnion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
8: Atif Aslam live in the UK.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
8: Book your tickets now at AXS.
7: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
10: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
0: Another huge giveaway is coming. Like a radio network.

0: This is Robina Khan with the magazine show. Like a radio.
1: पहले जो back to back दो songs अभी आपने सुने हैं, उनका introduction हो जाए आपसे. जैस्मिन की आवाज में था बन के दिखा 21. ये ऐसा लग रहा था मुझे बिल्कुल कि जैसे मेरी कोई मोटिवेशनल कोट या जो हम बात करते हैं ना कोट ऑफ द डे, इस तरह की जो भी बातें होती हैं, इसमें भी बड़ा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी. 19-20 से काम नहीं चलने का, बना के रख अपने आप को 21. तो ज़बरदस्त सॉन्ग था और इसको मोटिवेशनल सॉन्ग कह सकते हैं. दूसरा सॉन्ग की इंट्रोडक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं है. जो बिकस में खाई थी वो वादा किया था सन 2002 की फिल्म राज, जिसके गीत बहुत ज़्यादा उनमें कोई राज ही नहीं रहा, इतने ज़्यादा मशहूर हुए, इतने ज़्यादा लोगों ने पसंद किया. राज राज ही था हर वक्त. सो बहुत ही खूबसूरत तो बैक टू बैक सॉन्ग्स आपने सुने हैं. और अभी भी स्टोरी फिल्म ख़त्म नहीं हुई है, अभी तकरीबन 45 मिनट्स बाकी बचे हैं. प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए और प्लेलिस्ट भी अच्छी है. आज जो कोट ऑफ द डे है 3:30 पर, उसके लिए भी बिल्कुल रेडी रहिएगा. अगर आप कहीं इधर उधर हो रहे हैं रेडियो से दूर, तो 3:30 पर ज़रूर ज़रा ज़्यादा करीब आ जाइएगा. ये वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिएगा.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे लगा चुनरी में दाग 2007 की फिल्म से इस गीत को हमने लिया और आपके लिए प्ले किया। हाँ हो जी मुझे चाहता हूँ इसमें हमेशा सलाम टू ऑल लिसनर्स एक कर खामोशी से रेडियो सुनते हैं लेकिन आपको क्लासिक सॉन्ग लगा क्या तुम्हें याद है सो मैं आपके नाम करती हूँ उसको राताश में आपके लिए और सभी सुनने वालों के लिए इन जनरल।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स गुडनेस इन एवरी बाइट ट्राई इट टुडे अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: The Magazine Show with Robina Khan.
3: Location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
7: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
8: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
9: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
8: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
9: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल।
7: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
9: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
10: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit
2: Seven Stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales at leicamedia.co.uk.
13: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
0: And now, गीत सुनिए तलाश तलाश फिल्म से। अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ें हैं इसमें। सन 2003 में ये फिल्म रिलीज हुई, बहुत मशहूर हुई और ख़ास तौर पे इसके गीत सभी को बहुत अच्छे लगे। अयूब चौहान साहब ने कहा कि ये गीत उनके लिए प्ले कर दें। उनकी चॉइस अब धीरे धीरे बदल रही है तो अब उनको ऐसे गीत अच्छे लगते हैं। तो चलिए, आप रेडियो के बड़े पक्के लिसनर हैं, आपको आपके नाम कहते हैं।

0: अलका याग्निक और रुदित नारायण की आवाजें थी हमारे सभी सुनने वालों के लिए। बहुत सी इमोजीज, बहुत सी क्लैपिंग्स इस सॉन्ग के लिए हैं। तो जहां कहीं भी आपको ये गीत अच्छा लगा है, आपके अपने नाम लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर द मैगजीन शो की तरफ से।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: £1 का एक्सचेंज रेट आपको US डॉलर में 1.34 US डॉलर्स देगा। इंडियन रुपीज मिलेंगे आपको 129.75, पाकिस्तानी 375.40, बांग्लादेशी 165.71, श्रीलंकन 463.04, अफगानी 84.36।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. A LIKA Radio.

0: जहाँ भी आप हमें सुन रहे हैं ड्राइव करते हुए, तारिक अहवान आपने लिखा आपके नाम इस गीत को करते हैं, और वो सभी लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त लाइक रेडियो अंदाज फिल्म से गीत लिया मैंने आपके लिए।
1: The Magazine Show with Robina Khan. Quote of the day with Robina Khan. Like a radio.
0: सर जी, आपसे वादा भी किया है और ये फीचर भी है हमारे द मैगजीन शो का कि कोई ना कोई कोट ऑफ द डे या कोई ऐसी बात होती है जो हम जिसे हम लर्न करते हैं। पहले दो दिन कहानियां होती हैं और आज सेकंड एंड लास्ट डे यानी वेंसडे एंड थर्सडे तो कोट का डे है। और आज की कोट ये है कि जब आप ग्रो करते हैं उसी वक्त ग्रो करते हैं जब आप मिलकर काम करते हैं। मिलकर काम करने से ग्रोथ बेहतर होती है। ख्वाह आप कितने ही टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, तो लाइफ आसान उसी वक्त होती है जब आप किसी को ट्रस्ट करते हैं और अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलकर काम करते हैं। ये बिजनेस के लिए भी सही है, ये गिव एंड टेक दोस्तियों के लिए भी सही है। ये सब चीज़ें जो हैं इसको आप डिफरेंट चीज़ों पर रख कर जज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फैमिलीज उस वक्त ग्रो करती हैं और स्ट्रांग होती हैं जब डिफरेंट जो लोग होते हैं डिफ़िकल्ट टाइम में एक दूसरे की मदद करते हैं, उनका सहारा बनते हैं और उनको अकेला नहीं छोड़ते। तो फैमिलीज ग्रो स्ट्रॉन्गर करती हैं जब वो मिलकर रहती हैं। इसी तरह बिल्कुल कम्युनिटी बिकम सेफर एंड मोस्ट सक्सेसफुल जब सिर्फ इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल दूसरे के साथ कोऑपरेट करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके हेल्प करता है। इवन इन वर्क प्लेस मोस्ट जो सक्सेसफुल टीम्स होती हैं वो आमतौर पर वो टीम्स नहीं होती हैं जो जिनके पास इंडिविजुअल स्मार्ट होते हैं, बल्कि वो टीम्स होती हैं जो कम्युनिकेट बेटर करती हैं और जो जिनका गोल एक ही होता है, दे मूव टूवर्ड द सेम गोल। सो मिलकर काम करने में बरकत है, मेरा ख्याल ये कहना चाहती हूँ मैं। और अगर आप समझ गए हैं तो वंडरफुल।

0: ये सच है।
1: सिंगिंग को तो आप अप्रिशिएट कर ही रहे होंगे, लेकिन क्या बात है लिखने वाले की, मगर बंदा परवर खुदा तो नहीं हो।
2: खुदा तो नहीं हो।
3: This Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Latest Gold Rate is 108.89 pounds per gram.
3: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
4: Leica Radio.
5: Ye hai.
4: Leica Radio.
3: The Magazine Show with Robina Khan.
4: Leica Radio.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
10: यू मीन सफ्टोल ट्रेवल?
9: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
10: एक बार आजमाइए जरूर सफ्टोल ट्रेवल।
9: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
10: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
11: कॉल सफ्टोल ट्रेवल।

0: 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
2: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our रेडियो
3: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप
4: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स
3: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स
4: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स डीसी स्वैग इन एवरी बैग
5: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रागासन
6: हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सरिता सबरवाल एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूं सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे
7: Artist of the week is brought to you by our new podcast Laika Extra stream it now and be

0: नेहा कक्कर आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, आवाज इनकी सुन रहे थे आप, और म्यूजिकल डॉक्टर्स सुखे म्यूजिकल डॉक्टर्स.
1: Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आज आपको £1 के एक्सचेंज में 129.75 इंडियन रुपीस मिलेंगे. आप इंडिया मनी सेंड करते हैं वाया एसबीआई यूनो ऐप और ब्रांच बिफोर द एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ £75 का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000. और इसके अलावा एक ग्राम गोल्ड कॉइन भी आप जीत सकते हैं हर हफ्ता सेंडिंग ओवर £2,000. टीज एंड सीज अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. India Cricket Score Updates. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly. Great rates and low fees. Remitly. Proud to be the official partner of England Cricket.
0: IPL 2026 अहमदाबाद में 66 मैच खेला जा रहा है गुजरात टाइटंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान. और अभी तक जो रन स्कोर किए हैं गुजरात टाइटंस ने वो हैं 81 रन स्कोर किए हैं. उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, ओवर अभी 8 हुए हैं.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
10: ईमेल नाउ info@royalchai.com.
1: RizzCon next with Drive.
11: Leica Radio.
1: Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio.

0: को किससे जान से प्यारा, कौन है कौन नहीं है, अब इंतजार कीजिए, बल्कि इंतजार का कीजिए, ही इज इन द स्टूडियो रिज खान। बोल कफारा क्या होगा। और बहुत से लोग इस पे बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं, ये कवाली जो है जब वेडिंग्स पे गाई जाती है तो बड़ा बड़ा धूम मचता है। बहरहाल इसी नोट पर कि आप बिल्कुल ठीक रहे, मेरा और आपसे मुलाकात मंडे आफ्टरनून होगी एक बार फिर से, दो मुझे एक शो कवर करना है इन बिटवीन सैटरडे 7 to 10 PM, अगर आप हमारे साथ रह सकें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। रिज खान होंगे 4 o'clock के बाद और मैं अब चलती हूँ, बाय फॉर नाउ।
1: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network, offering the largest

0: Association.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
0: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: High Appreciation
0: in Dubai.
2: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner, Leica Radio.
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
4: यू मीन सफल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
4: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल.
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
5: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
6: Atif Aslam live in the UK.
7: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
6: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Advertise your service here. 0161 250 8222. Leica Radio, Greater Manchester.
9: हाय, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: भाई अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है और सारे अटेंडीज जो हैं अपना अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं. दर्ज होता है या दर्ज करवाते हैं? दर्जी ना दर्ज करवा रहे हैं. जी हाँ, अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है. तो हमारे साइलेंट लिसनर्स दुनिया जहां में कहीं भी आप अगर हमें सुन रहे हैं, बिल्कुल अपनी हाजिरी लगाइए और अश्विनी को बताइए कि आप उसका साथ दे रहे हैं. मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 7:14. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से फ्राइडे रहता है आपका मेरा साथ शाम 7 से 10 बजे तक. और जब शो शुरू होता है तो कोई ना कोई असाइनमेंट तो आपके लिए जरूर आती है. असाइनमेंट अभी दूं थोड़ी देरी में दूं? क्योंकि अटेंडेंस बढ़नी चाहिए ना. थोड़ी अटेंडेंस बढ़ने देते हैं और उसके बाद में आप सबको देते हैं अटेंडेंस. लेकिन पूछिए आप सबसे, कैसे हैं आप सब? आय हाय, थ्रिलिंग थर्सडे आ गया और थ्रिलिंग थर्सडे के साथ में आ गया साथ में और बिल्कुल ही दरवाजे के पास में वीकेंड. और वीकेंड आते से आप और हम कितने रिलैक्स हो जाते हैं. बहुत सारी चीजों पे बातें करेंगे लेकिन पहले ये हो जाए.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling could get you up to 128 rupees and 75 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like a radio. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dating in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
10: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
9: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
10: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल.
9: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
10: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
1: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
11: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
12: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
11: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
12: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
13: This is Leica Radio, Greater Manchester. Send us your feedback on our programs and presenters by simply emailing info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. We would love to hear from you to make Leica Radio, Greater Manchester a better station for you. Leica Radio, Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound. Don't forget, info@leicaradio.com.
14: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
13: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app.
15: This is Leica Radio,
13: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
15: This is Leica Radio,
13: Greater Manchester.
15: Leica Radio.

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 7:26 हो चले हैं अभी। कभी कभी जब मैं बोलना शुरू करती होगी तो आपको लगता होगा कि क्यों हंस रही है। अब आप लोगों के जिस तरीके से आप लोग वहां से मैसेजेस मुझे करते रहते हैं, नीलेश जी कहते हैं गुड इवनिंग बॉलीवुड प्रिंसेस, आहा क्या बात है प्रिंसेस मजा आ गया सुन के। संध्या जी कहती है बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं तो लाइका पे आ गई क्योंकि गाना अभी चल रहा था ना, ये कहां आ गए हम सीरियसली फैंटास्टिक। ओके, तो ये चीज मैं एक्चुअली आप सबसे कब से बात करना चाह रही थी इसके बारे में, पर बिल्कुल फर्स्ट डे ऑफ द वीक तो ना फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या बात करें, फ्राइडे, अरे फ्राइडे तो सब मस्ती के मूड में, आज ही बात क्या करें। ओके, आज का सवाल रैंडम नहीं है, हम सबके लाइफ से रिलेटेड है। ओके, एंड इस सवाल के पीछे मैं पहले ही बता रही हूं, दुख दर्द पीड़ा नहीं कर लेनी है किसी ने, ठीक है, नो दुख दर्द पीड़ा, नो रोना धोना। व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम दिस? ओके, हम सभी अपनी जिंदगी में फेलियर्स देख चुके हैं। ओके, इस देश में आके जब मैंने ड्राइविंग करना शुरू किया, आई फेल्ड फॉर 10 times। ओके, यस आई फेल्ड फॉर 10 times एंड आई पास्ड इन द 11th अटेम्प्ट। इट्स नॉट दैट कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, इंडिया में मैं बहुत ड्राइव करती थी। ओके, एंड यहाँ पे ड्राइविंग के लिए मैं पास होने के लिए एंक्शियस हो रही थी। अब ये बात भी जो है चार या पांच साल पहले की, फोर या सो फेलिंग एवरी टाइम, एंड व्हेन यू फेल तो रिजेक्शन जो है हम ले नहीं पाते, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार, मतलब व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ, 10 बार मैं फेल हो रही हूं यार, मतलब मैं इतनी गई गुजरी हूं क्या, क्या मुझे ड्राइविंग नहीं आती? नो, यूनिवर्स का कुछ प्लान होता है हम सब के लिए और हम उस चीज को समझ नहीं पाते। मेरा फेलियर मुझे कुछ सिखा रहा था, एंड बाद में ध्यान में आया मेरा फेलियर मुझे पेशेंस सिखा रहा था। और वो पेशेंस कब काम में आया? जब मैं एक्टर बनी, क्योंकि जब हम फिल्म सेट पे जाते हैं, हम लोग जब फिल्म्स की जब शूटिंग होती है, फिल्मों की फिल्मिंग होती रहती है, 12-12 घंटे की हमारी शिफ्ट होती है, मेकअप लगा के आप कॉस्ट्यूम में बैठते हो, 10-10 घंटे आप लोग बैठते हो, तो जब एक एक्टर 10 घंटे बैठता है तो करना क्या है आपको पेशेंटली राह देखनी है कि आपका शॉट कब लगेगा। आई अंडरस्टूड दिस इज वॉट यूनिवर्स वॉन्टेड मी टू लर्न। मेरी स्टोरी हो गई, अभी आप सबकी स्टोरीज। मैंने पहले कहा है दुख दर्द पीड़ा में नहीं घुसना है हमको, आपकी लर्निंग, आपके फेलियर ने आपको क्या सिखाया, ठीक है, बस इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाइए, अगर कोई फेलियर आपको बहुत हर्ट कर रहा है वहां तक मत जाओ, जस्ट द लर्निंग। ओके, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लर्निंग हियर। दिस इज लाइका गोल्ड रेडियो,
1: ये है लाइका रेडियो,
3: द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: व्हाट अ लवली ट्रैक, मनादे और शैलेंद्र सिंह की आवाज में बॉबी फिल्म से सुनाया आप सभी को ना मांगू सोना चांदी। एंड सवाल जो मैंने पूछा है, ओ माय गॉड क्या बात है, लोगों ने फटाफट अपने दिल के राज या अंदर दबी बातें बोलना शुरू कर दिया है। मैंने ये पूछा है कि आपके फेलियर्स ने आपको क्या सिखाया है। फॉर मी इट वॉज पेशेंस, वॉट अबाउट यू? किसी ने कहा है कि भाई मैं एक्सेप्टेंस में आ गया हूँ कि भाई जब चीजें जो हैं ऐसी हैं, सो जब बहुत एक्सट्रीम लड़ लड़ के थक जाते हैं ना, तो एक्सेप्टेंस में आना पड़ता है कि चीजें ऐसी हैं। फैंटास्टिक। किसी ने कहा सरेंडर कर देना, ओके आई थिंक एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर नियरली सिमिलर इसमें जा रहा है। बिल्कुल बताइए, खुल के बताइए भाई, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने फेलियर्स के बारे में बात करो, हम अपनी अचीवमेंट्स के बारे में कितनी बात करते हैं, अपनी खुशियों के बारे में कितनी बात करते हैं, है ना। हमने बंगला लिया, गाड़ी ली, मेरे पास में इतने रूम्स का घर है, इतने रूम्स की इतनी बड़ी गाड़ी है, ये ब्रांड की गाड़ी है, इतने हीरे जवाहरात मोती है, फेलियर्स के बारे में भी बात कर लो, उसका भी मजा अलग सा ही है। जितने भी बार आप फेल हुए, जहां पे, लेट इट बी योर स्कूल, कॉलेज, ड्राइविंग, एनीथिंग, इफ यू वांट टू कम एंड टॉक, आइए। नेक्स्ट ट्रैक आप सभी के लिए तराना फिल्म से शैलेंद्र सिंह और उषा मंगेशकर की आवाज में।
1: हाय, मैं हूं अश्विन। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अपॉन रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विन। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: इट्स 49 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी. तीन अमेजिंग फीचर्स लेके आपके लिए हाजिर हो जाती हूँ हर शाम मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 बजे तक. यादों की बारात पहले आवर में आप और हम ये सुनते हैं, सेकेंड आवर में इमोशन ऑफ द डे, थर्ड आवर में गजल या कवाली. और पहले आते से पहले एक काम होता है, वो होता है आपकी असाइनमेंट. हम बात करें आज फेलियर्स के बारे में. अब किसी ने कहा भाई फेलियर का मतलब क्या होता है, सक्सेस का मतलब क्या होता है? जो हमारे मन का ना हो वो फेलियर हो जाता है हमारे लिए, है ना. और जब हम ह्यूमन लाइफ जीते हैं तो कुछ नॉर्म्स कंडीशन दी गई, जब हम उसे नहीं मीट कर पाते हैं तो ऑब्वियसली फेलियर है. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने क्या सीखा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेलियर सक्सेस इन दैट सेंस कि भाई हमने इतनी बार फेल हुआ या हम उतनी बार फेल हुए. नो, इट्स नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. हम आज बात कर रहे हैं हमारी सीख क्या रही, है ना. थ्रिलिंग थर्सडे लेके आई हूँ आपके लिए सेकेंड आवर में, वहीं तो हम बढ़ते जा रहे हैं. लेकिन इंडिया में फिलहाल जो है बहुत कड़ाके की धूप चल रही है और कुछ कुछ लोग छोटी छोटी बातों में अपनी ह्यूमैनिटी दिखाते. एक कार वॉशिंग सेंटर के पास में जब एक बफेलो यानी एक भैंस आके वहां पे खड़ी हुई, तो वहां पे काम कर रहे एक लड़के ने गाड़ी धोने के बाद में तुरंत वो जो स्प्रे वाला पाइप था जिसमें से ठंडा पानी आ रहा था, उस भैंस को उसने उस ठंडे पानी से नहलाया. अब होता यह है कि वो भैंस वहां पे आके खड़ी हो जाती है और ये ठंडे पानी की बौछार से उसे बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली जब धूप बढ़ जाती है तो ये पशु और पक्षी जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं दे एक्चुअली सफर सो मच बिकॉज ऑफ दिस हीट. हम तो भी घर में चलो फैन लगा लेते हैं, एसीज लगा लेते हैं, है ना. तो समर्स में जरूर ये काम करिए कि अपने घर के बाहर जो है बैकयार्ड है या घर के सामने भी अगर कुछ स्पेस है तो बोल्स में पानी भर के रख दीजिए. जो स्ट्रे कैट्स होती हैं, जो स्ट्रे जो फॉक्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके लिए खाना और पीना जब हम मुहैया कराते हैं, उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कर्मा में तो ये ऐड होता है. एंड वी प्रूव अगेन दैट वी आर ह्यूमंस. ह्यूमंस के पास में तो बोलने की भी क्षमता है, इमोशन व्यक्त करने की भी क्षमता है, तो जरूर ये करते चलिए. इस आवर का आखिरी गीत देवी फिल्म से, विच वॉज रिलीज इन 1970, उस फिल्म से आपको सुना रही हूँ मोहम्मद रफी की आवाज में. शादी के लिए आए है, अगर किसी की शादी है तो कंग्रेचुलेशंस, आपके लिए ये गाना डेडिकेट कर लो. किसी ने अपनी शादी की सालगिरह मनानी है तो आपके लिए डेडिकेट कर लो, है ना. शादी वर्ड से रिलेटेड है. इट्स फॉर यू.
1: दिस ईद उल अज़हा, शेयर द जॉय नो मैटर द डिस्टेंस, व्हेदर यू आर नियर और फार. सेंडिंग सपोर्ट इज जस्ट अ टैप अवे. सेंड मनी विद वेस्टर्न यूनियन. एंजॉय जीरो ट्रांसफर फीस ऑन योर first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
2: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colorful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation, and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep, 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner, Laika Radio.
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage, 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
8: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
9: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
3: New Asian sound for the northwest of England.
10: Like a radio.
3: The evening show with Ashwini.
10: Like a gold.
3: This is Like a Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio.

0: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना है। इट्स 8:13. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी एंड मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 आपका हमारा रहता है साथ। टुडे हम मना रहे हैं थ्रिलिंग थर्सडे। मना क्या रहे हैं, क्योंकि है ही अब थर्सडे तो उसको थ्रिलिंग बना रहे हैं, मना क्या रहे हैं। ओके, तो आज मनाया जाता है इंटरनेशनल चाय वाला दिवस। आपके चाय दिवस को मनाने वाले कौन दोस्त मंडली है? भाई मेरे तो चाय दोस्त मंडली अंजलि है, जो मेरा शो भी ट्यून इन करती है, और उसने फिर से याद भी दिलाया कि आज चाय का दिवस है। ओके, इंटरनेशनल टी डे, और तुम टी के बारे में कैसे बात नहीं कर सकती? बिल्कुल बात कर रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि चाय के बारे में ना बात ना हो? जब भी चार लोग चाय की प्याली हाथ में लेके बैठते हैं तो चाय इट्स नॉट ओनली अ ड्रिंक, इट्स बेसिकली एन इमोशन अगेन। क्योंकि चाय की चुस्कियां लेते लेते हम लोग जब बातें करते हैं तो कितने राज बोल देते हैं ना, कितने राज निकलवा लेते हैं। कुछ मन की बातें, कुछ स्ट्रेस वाली, कुछ खुशी वाली, कुछ शुक शुक, किसी को कोई सीक्रेट पता ना चले, मैं बस तुझे ही बता रहा हूँ या तुझे ही बता रही हूँ ओवर द चाय। और चाय पे चर्चा, आय हाय कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, फाइनेंस में क्या चल रहा है, देशों के बीच क्या चल रहा है। तो चाय सुकून भी है और चाय खबर देता भी है, चाय खबर निकलवाता भी है। हैप्पी इंटरनेशनल टी डे, अभी तो इवनिंग हो गई, टू ऑल ऑफ यू।
1: Leica Radio, Greater Manchester, on 9:63 AM and 13:77 AM.
2: ये है
1: Leica Radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 128 Indian rupees and 75 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: The Evening Show with Ashwini.

0: भाई, अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में मतलब अमेरिका में जाके सेटल होंगे ओके, और वहीं पे शादी करने वाले हैं, तो पहले तो ये चीज सुन लो ओके. A study has revealed that the majority of American dog owners are willing to end their relationship if their dog doesn't like their partner. तो अगर डॉग्स के साथ में आपको दोस्ती करने में मुश्किल होती है तो यहाँ से दोस्ती करना सीख के चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आप जिसके भी जिस इंसान को अपना पार्टनर चूज करो उसके पास में अगर डॉग है और उसके डॉग ने अगर आपको पसंद नहीं किया तो ऑल द बेस्ट. The study The Truth About Dog People was conducted by Rover.com and examined thousands of dog owners' responses. Data shows that the human-dog relationship has evolved from one of ownership to one based on kinship. In the study, Rover.com says 54% of pet parents are willing to end a relationship if their dog didn't like their partner. इस चीज़ पे तो मैं भी बात कर सकती हूँ. हमारे यहाँ पे भी डॉग है, पीछे के बारे में मैं हमेशा आपसे बातें करती रहती हूँ. जब हमने हमारी इस बिटिया रानी को हमारे घर पे लाया तो हाफ ऑफ द फ्रेंड सर्कल दे वैनिश्ड बिकॉज दे वर नॉट कंफर्टेबल विथ हर, बट जो हमारे रियल दोस्त थे वो बड़े कंफर्टेबल होके रुके. कह रहे हैं क्या बात है, घर में ये छोटी सी मेहमान आई है, इससे तो हम दोस्ती करके रहेंगे. और भाई हमारी बिटिया रानी ने भी सबको एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए हमारी भी दोस्ती कंटिन्यू अभी हो रही है. अगर आपके पास में पेट है, आपका अनुभव कैसा रहा कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली है, दूसरे लोग हैं, उनका एक्सेप्टेंस कैसा रहा, वो सब छोड़िए, आपके पेट ने एक्सेप्ट किया आपके दोस्तों को और एक्सटेंडेड फैमिली को.
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Leica Radio. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May, at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct, exclusive radio partner, Leica Radio.
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
4: यू मीन सफ्टल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
4: एक बार आजमाइए जरूर सफ्टल ट्रेवल.
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
5: कॉल सफ्टल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
6: ट्रांसफर मनी home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
8: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
10: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24-7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com.
11: This is Leica Radio.
10: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
11: This is Leica Radio.
10: Greater Manchester.
11: Leica Radio.

0: भाई आप में से कितने हमारे लिसनर्स मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि अश्विनी जी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है चलने दीजिए। अगर सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहा तो आप लोग सोचेंगे कि अश्विनी कहाँ गायब हो गई, है ना। मैं यहीं पे हूँ। जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 रहता है आपका और हमारा साथ। जी हाँ, आप सभी ये जो प्लेलिस्ट हमने अपलोड की है उसे पसंद कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट शो, सो माफी चाहती हूँ आप सबसे कि मैं आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट नहीं ले पाती इस शो में। तहे दिल से माफी, जरूर माफ कर दीजिए आपकी इस दोस्त को। और अब इमोशन ऑफ द डे में, थ्रिलिंग थर्सडे। जब हमने कहा थ्रिलिंग थर्सडे तो एक थ्रिलिंग सा गीत तो बनता है मुगले आजम से। कौन सा गीत होगा जरा गेस तो कीजिए।
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show. Emotion of the day.

0: एक बार मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 44 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंडन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। बहुत ही प्यारा और रोमांटिक ट्रैक हमने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में सूरज फिल्म से। अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले बात हो जाए कुछ ओल्ड स्कूल पीपल की। तो आज नेशनल मेमो डे मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, चाय के बारे में तो हमने बताया आपको, नेशनल नोटबुक डे, एंड ऑफ द वर्ल्ड डे नेशनल नोटबुक डे। अब इस पे मुझे इसीलिए बात करनी है कि कितना भी जमाना डिजिटल हो जाए, लेकिन जर्नलिंग करना, हाथों से लिखना, आई एम ओल्ड स्कूल दैट वे, आई लव टू राइट डाउन माई नोट्स। शो के लिए भी जब आती हूँ तो मेरी प्रेप करके जो मैं लेके आती हूँ ना, पूरा ऐसी लिखावट रहती है पूरी मेरी डायरी में। आई जस्ट राइट डाउन, आई हैव माई जर्नल जिसमें मैं लिख के लाती हूँ चीजें। तो डिजिटल एरा में आई डोंट नो, समहाउ डिजिटल रीडिंग भी करते हैं लोग, बट फॉर मी एज आई सेड, वो जो पन्नों वाली किताब होती है, जब आप किताब नहीं खोलते हो कोई भी, तो उसका जो एक फ्रेग्रेंस होता है ना, वो एक अजीब सी खुशी देता है। इज इट ओनली मी कि उसको इतनी खुशी होती है? उसको मतलब क्या, मुझे इतनी खुशी होती है, या शायद आपको भी खुशी होती है? नई किताबें, स्कूल डेज में जब नई किताबें आती थी, वो जो कवर आते थे, जब भी किताब खोल के वो डाई एंड जो डाई जिससे यूज होती थी फॉर टू प्रिंट द वर्ड्स, उसका और उस जो टेक्सचर ऑफ द पेज है उसका एक कॉम्बिनेशन, जो एक अजीब सा खुशनुमा और मेमोरेबल स्मेल हमारे साथ में रहा करता था। आपके पास में भी इसकी सब यादें होंगी, बिल्कुल। जी हाँ, मैं मीठा खा के आई हूँ तभी इतने प्यारे प्यारे गीत लग रहे हैं, है ना? और भी प्यारे गीत हैं आपके लिए, रुकिए, जाइए। मैं
1: Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 129.12 Indian rupee, 374.34 Pakistani rupee, 463.9 Sri Lankan rupee, 165.09 Bangladeshi taka, 84.54 Afghani.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £108.18 per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: Like a radio. तो आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप सबके मैसेजेस हमें ये भी बता रहे हैं कि आप लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कौन सी प्लेलिस्ट अभी और आ रही है नेक्स्ट आवर में। बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट है हमेशा की तरह, जैसे मैंने कहा, थ्रिलिंग थर्सडे पसंद आया आप सबको, है ना? आप सबके मैसेजेस आए, बिल्कुल। नेक्स्ट दो ट्रैक्स जो मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ, उसमें से पहला गीत होगा घूंघट फिल्म से, महेंद्र कपूर एंड आशा भोसले की आवाज में, एंड आखिरी ट्रैक, Oh my God, इस ट्रैक के बारे में तो, this is one of my favorites, संगम, which was released in 1964, उस फिल्म से इस आवर का आखिरी गीत आप लोग सुनने वाले हैं, लता मंगेशकर एंड मुकेश की आवाज में, ओ मेरे सनम, what a beautiful emotional track that is. गीतों का अपना एक मजा होता है, एंड लिरिक्स एंड इमोशन जब आते हैं साथ साथ, आहा, तो द इवनिंग शो विद अश्विनी बन जाता है। कल फ्राइडे है, तो कल आरजे अश्विनी बन जाएगी डीजे अश्विनी फॉर सम टाइम, है ना? तो कल जल्दी खाना वाना खा के बैठिएगा, सारी कैलोरीज बर्न करेंगे आप लोग डांस करते करते। आप भी कहीं नहीं जा रही हो? हाँ, अभी हूँ मैं, एक घंटा और हूँ। और आप लोगों के जो डिनर के आप यम्मी यम्मी डिशेस के फोटो भेजते ना, ये अच्छी बात नहीं है। सोचिए, यहाँ पे स्टूडियो में सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं यार बैठे बैठे।

0: थर्ड आवर में एंट्री ले ली जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है. आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. कुमार सानू आशा भोसले की आवाज में जान तेरे नाम, ओए होए ये भी कितना हिट था. उसके बाद में सेकेंड जो हमने गीत सुनाया आजा शाम होने आई, दैट इज मैंने प्यार किया से 1989 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. अच्छा, मैंने प्यार किया हिट होने के बाद में जो छोटी छोटी चीजें उस फिल्म में यूज की गई थी, जैसे कि सलमान खान जो अपनी कैब भाग्यश्री को देते हैं और फिर भाग्यश्री वो जो फ्रेंड वाली कैब पहनती है, वो छोटी एक कार शेप की एक बैग होती है सलमान खान के पास में रेड कलर की, तो ये छोटी छोटी जो चीजें उस फिल्म के बाद में जो मर्चेंडाइज बन के बेची गई और जो जैकेट सलमान खान ने पहना था, फिर उस जैकेट का ट्रेंड. कोई फिल्म जब आती है हिट होती तो उसके अंदर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज भी हिट होती है, अलॉन्ग विद दोस कैरेक्टर्स, द स्टोरी एंड जिस तरीके से उन्होंने कपड़े पहने होते हैं. सो फिल्मों का अपना एक मजा होता है, हर एक किरदार स्पेशल बनता है बिकॉज ऑफ दो छोटी छोटी चीजें. ऑब्वियसली एक्टिंग किरदार उनका तो है ही, डायलॉग्स भी हैं, पर छोटी छोटी चीजें भी जब हम देखते हैं तो उस किरदार के साथ में जोड़ देते हैं, जैसे कि फ्रेंड वाली कैप उस समय जो हिट हुई थी, है ना. ये सारी जब चीजें मैं ये गीत सुनती हूँ तो मुझे ये सारी चीजें भी याद आती हैं. तो आप में से किसी के पास में थी वो फ्रेंड वाली कैप सलमान खान की, वो छोटी सी रेड वाली बैकपैक जैसा था उनका जैकेट? हाँ था, मुझे बताइए जरूर.
1: अश्विनी ब्राइटनिंग अप योर वीक नाइट, ये है लाइका रेडियो, लाइका रेडियो. SBI UK मनी टॉक. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling could get you up to 128.75 rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, LeicaRadio.com and Alexa. Play Leica Gold 2. Download the Leica Radio mobile app to listen live and listen back to Leica Radio Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 129.19 Indian rupee, 374.32 Pakistani rupee, 463.06 Sri Lankan rupee, 165.08 Bangladeshi taka and 84.58 Afghan Afghani.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £108.18 per gram.
0: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: तो भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. टिक टिक करते हुए घड़ी क्या कह रही है एक बार देख लेते हैं. इट्स नियरली रुक जाए क्या 6-7 सेकंड. ना ना चलो बता देते. इट्स 42 मिनट्स पास्ट 9. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. अब इवनिंग की नाइट भी हो गई, ठीक है. सो गोल्ड नाइट हमारा ओवरनाइट सर्विस है. लाइका रेडियो 90s वाले बच्चे खुश हो सकते हैं, आपके लिए 90s के गीत हम लोग लेके आए हैं. लाइका रेडियो पंजाबी एंड लाइका गोल्ड 2, ठीक है. इतनी सारी चीजें, अगर रात में काम कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, झगड़ा हो गया, दूसरे रूम में आके बैठे, जो भी चल रहा है, रेडियो लगाओ, मस्त रहो, ओके. एंड हमेशा की तरह इतना ही कहूंगी, देखिए लाइफ बहुत सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए. प्यार दो, प्यार लो. हम तो म्यूजिकल फैमिली है ना, हमेशा की तरह यही कहेंगे कि पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए यार, प्यार सब कुछ देता है जिंदगी में, ओके. कल मिलेंगे शाम को, फ्राइडे है ना, फैंटास्टिक फ्राइडे मनाएंगे हम लोग साथ में. तो आरजे अश्विनी बन जाती है डीजे अश्विनी आप सबके लिए. खाना पीना करके बैठिए, कैलोरीज बर्न करेंगे. शुरुआत तो धूमधड़ाके से करेंगे, है ना. कोई प्लेलिस्ट में अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट प्ले नहीं कर सकती, लेकिन हमेशा की तरह आप लोग हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे पसंद करते हैं, तो पसंद करते चलिए, क्योंकि हमारे सारे के सारे प्रेजेंटर्स पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी एंटरटेनमेंट हो जाए. हाँ जी, अपना खूब ख्याल रखिएगा. मौसम का तकाजा, कल बहुत ज्यादा धूप रहने वाली है, टेम्परेचर हमने बताया आपको, तो पानी अपने साथ रखिए, छाता अपने साथ रखिए, सनस्क्रीन लगाइए और जैसे भी है अपने आपकी पूरी पूरी केयर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी म्यूजिकल फैमिली में से किसी को भी गवा नहीं सकती. ऑन दैट नोट आई हैव टू से बाय, गुड नाइट.
3: ये है
2: Leica Radio.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with

0: देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: A new Asian sound for the northwest of England.

0: Rika Radio. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
2: यू मीन सफल ट्रेवल?
1: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
2: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल.
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
2: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
3: कॉल सफल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
0: Punjab, the biggest tunes.